0: मिनट ना, आइए हम लोग आने में 6 बजे
1: ए समय को साथ मा जितू सुनचादी पसल वालिंग 8 पेट्रोल पंप को नजिक जैसी 15 जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: रेडियो आदि खोला 105.4 आपने ख्याल रखना।

एसएस आदि खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सैंजा।

0: पहले हम लोग दस बजे
1: ए समय को साथ में जितु सुनचादी पसल वालिंग आठ पेट्रोल पंप को नजिक जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ।

0: कृष्णा, अहिले हाम्रो गर्नेमा 11 बजेको छ।
1: इस समय को साथ में जितू सुनचादी पसल वालिंग 8 पेट्रोल पंप को नजिक जैसी 15 जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
0: सुंदर रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुस् है।

0: सुनिश
1: इस समय को साथ में जितू सुनचादी पसल वालिंग आठ पेट्रोल पंप को नजिक जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
0: रेडियो आदि खोला 105.4 आपने ख्याल रखना।

केलाई मन पराएर मलाई तर्पाएर दाङका उदयमान नक्षत्र तीर्थ घस्पी पवन विरही पाण्डेको एक तीर्थता अब शब्द शब्दमा सीआरबीटी नम्बर 01300045429 पीआरबीटी नम्बर 7045652 स्वर नरेन्द्र प्यासी संगीत संतोष श्रेष्ठ गीतकार एसएन पाण्डे पवन मोबाइलमा सीआरबीटी र पीआरबीटी डाउनलोड गरी माया

एस आधी खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार छंगजा।

हो हरेक रात 10 बजेसम्म कुलकुली डटम्लाई रेडियोमा देशैभरि सुन्न सकिन्छ हाम्रो पात्रमा सजिलो गरी सुनौ बुझौ बुझौ सुनौ हटाऊ कन्फ्युजन ग्याप सोलुसन इट्स अ कुल डुली डट कम ग्याप सोलुसन इट्स अ कुल डुली डट कम